भाई जब उजाता मत तमा उनका जंतु मगर की उनका चेन पूरा ही एक्सो एक्सो टाने बुझना की जोले ओहो लियल छेरे दिल दिया फील करें 90.4